0: मै मेधा मै प्रजा मै इंद्र इंद्रियम ददा तो मै मेधा मै प्रजा मै सूर्य राजो ददा तो
1: अपई तो मृत्युरमृतम न आगन वैवस्वतो नो अभयम कृणोतु
0: वनस्पतेरिवाभिनशीयतां रेष चेपते
1: परम मृत्यो अनुपरे।

0: सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणाधिपति ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो
1: विष्णोर्परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरगः
0: वचक्षुरातम्
1: प्रासो विपन्यपो जागृवागुं सत्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम्।

ओम ओम नमो भगवते रुद्राया ओम नम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्या मुदते नमः स्वाहा यात इष शिवतमा शिवम् भोवते धनुः शिवाशर्व्याय तपतगानो रुद्र स्वाहा तपतगान

हरि ओम श्रीमात्रे नमः साई रामा बीजापूरगदेक्षु कार्मुक लसच्चक्राब्ज पाशोत्पल व्रीह्यग्रस्व विषाण रत्नकलश प्रोज्यत कराम्बोरुहगा जेयो वल्लभया सपद्मकरया श्लिष्टोज्ज्वलद्भूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थिति करो विघ्नेश इष्टार्थदगा ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं

0: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
1: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: Sorath Mahalla Tija Kar Pahla Ek Ovankar Sadgur Prasad Sevak Sevakar Sab Teri Jin Sabdai Saad Aya Gur Kirpa Te Nirmal Hova Jin Vichon Aap Gawaya An Din Gun Gaave Nit Sache Gur Kai Sabd Sohaya मेरे ठाकुर हम बार के शरण तुम्हारी एको सच्चा सच तू केवल आ मुरारी रहाओ जागत रहे इतनी प्रपाया शब्दे हो मैं मारी गृह मह सदा हर जन उदासी ज्ञान तत् बिचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया हर राख्या उर तारी एहो मनुआ दे जस्ताम दा दूजे पाए खुवाया मनमुख मुगद हर नाम ना चेता बिरथा जन्म गवाया सतगुर पेटे का ना हो पाए हम मैं मोह चुकाया हर जन साचे साच कमावे गुर कै शब्द विचारी आपे मिल ले प्रभ साचे साज रखिया उर तारी नानक नाम गत मत पाई एहा रास हमारी सोरठ महला तीजा भगत खजाना भगतन कौ दिया नाओ हर तन सच सोए अखुट नाम कदे निखुटे नाही अखुट नाम तन कदे निखुटे नाही किने ना कीमत होए नाम तन मुख उजले होए हर पाया सच सोए मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए बिन शब्द जग पुलदा फिरदा दरगह मिले इस जाए रहाओ इस ते ही अंदर पंच चोर वसै काम क्रोध लो मोहंकारा अमृत लूटै मन मुख नहीं बूझै कोई ना सुने पुकारा अंधा जगत अंध वर्तारा बाजगुरु गोबारा

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सै सुमाणी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा के बिख काटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरण ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गात्मा तो तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखियन दा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हों मैं बंधन कमाए जमन मरन सिरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हों मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम सुख होई। त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करै सो होई। नानक राम नाम निस्तारा सबदे हम मैं खोई। सोरठ महल

भोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई एह मन तेरा भाई रहाओ पाव मिलोवा मल मल तोवा एह मन तैकू देसा सुन मीता हौ तेरी सरनाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा मान ना कीजै शरण परिजै करै सो पला मनाइय सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इउं दर्शन हर जियो पाइय भयो अनुग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी सबा कुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रतपाल नित सार संभाल एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परयो रामदास रहाओ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व घटा पर पूरी रे पेखत सुन तो सदा है संगे मैं मूर्ख जान्या दूरी रे हर बेअंत हों मित कर वरना क्या जाना होए कैसो रे करो बेंती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना भरिया रे सोरठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंदेसरो ते मिटे सब गया सह सैन यार सुख मन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज पया जे ठाकर कहो सुनते अगाध बोध सोरदय गुरदया रहाओ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करै बेनती राग ठाकर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोबिंद का खुलिया जह प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरदीना मेरा मंतन शीतल थिया।

ज्ञाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर दे सारहाओ। तुम सब साजे साजने वाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेरवाना। तुम करो भला हम भलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला। राग संतन कै पाछ सोरठ महला पंजवा कर दूजा। मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सा।